आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: From the team that you trust at Sunrise Radio comes the station made for your mellow moments. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. The same Sunrise spirit, just more smooth. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Available nationwide on DAB, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.

0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: लॉटो फ्रॉम द नेशनल लॉटरी नाउ गिव्स यू 2 चांसेस टू विन विद एवरी टिकट। सो इट कुड बी यू एंड इट कुड बी यू, यू एंड देन द सेम यू अगेन, यू यू। 1 टिकट, 2 चांसेस टू विन। न्यू लॉटो, it could be you, and it could be you.
3: See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
4: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration, and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
5: It's not about earning praise, what you weigh, mirror selfies, or every TikTok craze. It's about embracing every wobble, looking funny in goggles, doing the twist and shout, and chatting with your mates until the giggles run out. It doesn't matter how you move, just move. Start with just 10 minutes of activity to help boost your energy levels, mood, sleep, and confidence. Search This Girl Can. We like the way you move.
6: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: कितने खूबसूरत अंदाज में ये गाना गाया है लता जी और किशोर जी ने। घर आपकी बातों में कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना ये आपकी आदत तो नहीं। इसे आप सुन रहे सनराइज पर आज फ्राइडे की सुबह शबनम साही के साथ लिसनर्स चॉइस
1: ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
3: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 10 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Simran Chaudhary from Dhurandhar. That's your hit of the hour.

0: आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हाइशा एंड अ ब्यूटीफुल फिल्म। पापोन की आवाज में ये गाना द मेल वर्जन, देयर इज अ ब्यूटीफुल फीमेल वर्जन एज वेल। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। इसे आप सुन रहे सनराइज पर आज फ्राइडे की सुबह शबनम साही के साथ।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक।
3: A dream waiting to be revived. Watch Dr. RMB Monday to Friday 7 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: My gule gulzar inhaling Jumma Mubarak to you. Thank you so much for asking. The boys are well. In fact, the boys will be home in less than 2 weeks. I can't wait. Right now, Fahim Abdullah, Chand Mera Dil on Sunrise.

0: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5. Southall Travel invites you to Dubai, where world-class hospitality, stunning resorts and iconic attractions await. From beaches to desert adventures, there's something for everyone, all at unbeatable prices. Call 0208 574 8410. Southall Travel, at all protected.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।

करती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।